वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो NA सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इस हल्ले गुल्ले में शामिल आराम के सीजन में उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चौसा और अनवर डॉल ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो आता भी बहुत कम मुद्दत के लिए और उसके साथ साथ

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो एन ए सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा ना परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: Yes, my friends. So I am back और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है क्योंकि हमारा और आपका साथ होता है मंडे टिल सैटरडे 12 से 2 के दरमियान। तो बिल्कुल भाई ये साथ कायम और दायम है। आज 20 मई है और हम सिर्फ 7 रोज दूर हैं ईद उल अजहा मनाने से और ईद उल अजहा के साथ साथ जिम्मेदारियां, एक्साइटमेंट, काम, छुट्टियां, इस सब के बारे में इस वक्त सब लोग सोच रहे हैं। और इस दफा ये था कि छुट्टियां जरा ज्यादा मिल रही हैं सो इसलिए पीपल इज सो एक्साइटेड। और अभी तक आई थिंक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एक जो है वो हज वाले दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर ईद के 3 दिन की मिलेगी और जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है उनको तो भाई बहुत ही ज्यादा ये वीक ब्लेसिंग का वीक लग रहा है जो कमिंग वीक है बिकॉज बहुत सारी छुट्टियां एक साथ मिलने वाली हैं। लेकिन अभी तक आई थिंक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है बट द थिंग इज दैट कि अभी जो कल मैंने पढ़ा था तो उसकी अपडेट के अकॉर्डिंगली ये है कि आपको छुट्टियां जो हैं वो ट्यूजडे से नहीं बल्कि वेडनेसडे से मिलेंगी, यानी कि हज वाले दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी और वेडनेसडे से छुट्टियां अनाउंस की गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, क्या इसमें कोई रद्दोबदल होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ताजातरीन खबर यह है छुट्टी चाहे एक मिले, दो मिले, जितनी भी मिले, हर इंसान को छुट्टी ना कम ही लग रही होती है क्योंकि छुट्टी आने से पहले ना हम उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि ये करना है, वो करना है, या यहां जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है। अच्छा नहीं भाई, इतने सारे लोग आ रहे होंगे तो कितनी सारी जिम्मेदारियां। बिल्कुल भाई, जिम्मेदारियां और रौनकें जो कि इस वक्त कराची की हर गली में नजर आ रही हैं, बल्कि सिर्फ कराची की हर गली में नहीं पूरे पाकिस्तान में आपको ये रौनकें नजर आ रही हैं। हम कराची के रिहायशी हैं, कराची में रहते हैं इसलिए जिक्र कराची जरा ज्यादा करते हैं, लेकिन ये रौनकें और ये मोहब्बतें ये आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हर गली में नजर आ रही हैं जहां बड़ा मजा आ रहा है और हर कोई ना बड़े शौक से जानवरों को देख रहा होता है, प्यार कर रहा होता है और हर किसी की ना कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ करके हम भी अपने किसी के भी जानवरों की खिदमत कर सकें। और आजकल तो भाई सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज ना सोशल मीडिया पर लोग अपलोड करे होते हैं, उनको नहलाना, उनका ख्याल रखना, उनसे मोहब्बत करना, हर चीज इज ऑन सोशल मीडिया नाउ डेज। तो भाई आपके भी जानवर आ गए हैं, आप भी उनके साथ इस वक्त यही कर रहे हैं, उनके नखरे उठा रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं या भी इंतजार है जानवर के आने का। तो क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त आपकी भी भैया हमें जरूर बताएं क्योंकि आजकल मैंने रोजाना की बुनियाद पर यह जिक्र शुरू कर दिया है तो हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतजार। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 36

यस एवरीबॉडी, सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि भाई इस वक्त जो वो रौनकें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कराची शहर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये रौनकें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हमने इसको यहां पे करेक्ट किया कि भाई क्योंकि हम कराची की रिहायशी हैं तो ज्यादा जिक्र हम कराची का कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त ना ये रौनकें पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही हैं और आना शुरू हो गई हैं। एंड यस दिस इज सो नाइस। और सब लोग अपने जानवरों को जिस तरह मैंने कहा ना ख्याल रखते हैं, नहला रहे हैं और आजकल मैंने देखा कि नहीं आइसक्रीम भी खिला रहे हैं। And that is so nice because भाई बड़ी गर्मी है भाई, और इस गर्मी में मैं तो कहती हूँ कि बस सिर्फ ठंडी ठंडी चीजों के बारे में सोचें या ठंडे ठंडे मशरूबात पिएं, that is very good and important। और भाई तरबूज तो मैं कहती हूँ ओह हो, फ्रीजर में डालें और उसके बाद उसे खाएं। तरबूज है, आम है, हमारे पास वक्त बड़ी मजे मजे की चीजें मौजूद हैं जिससे हमारी गर्मी जो है वो कम भी हो सकती है। तो बिल्कुल भाई इन चीजों को खाएं पिएं, और जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं इस दौरान हमने जानवरों का भी बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक हमने बात सिर्फ ख्याल की कि लोग ख्याल रख रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उसी के साथ साथ उनको जो जेवरात पहना रहे होते हैं ना वो भी बड़ा प्यारा लग रहा होता है। उनके लिए खूबसूरत सी चादरें खरीदी जा रही होती हैं उन्हें पहनाने के लिए, उसी के साथ साथ जो है वो उनके जो अलग अलग तरीके के जेवरात उन्हें पहना रहे होते हैं। अच्छा वो भी बड़ा मजे का टाइम होता है क्योंकि जब आप उसे चूज करने जा रहे होते हैं ना तो आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई सबसे अच्छा और यूनिक हम जो है वो जेवरात लेंगे, भाई हमारा जानवर पे जरा ज्यादा जचे। तो ये सबके शौक होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है ये सारे जो शौक हम लोग सब पूरे कर रहे होते हैं, सारे काम जो हम लोग कर रहे होते हैं। सो दैट इज रियली रियली नाइस। और उसी के साथ साथ जैसे कि सिब्बी, मेरा जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर है ना वो सिब्बी, मुझे सिब्बी बहुत ज्यादा पसंद है। और सिब्बी के ऊपर जो वो लाल या काली रंग की चादर पहनाते हैं ना, ओहो हो, उससे तो भाई मैं कहती हूँ कि सिब्बी वैसे इतने खूबसूरत एक जानवर है, और उसके बाद जब उस पर ये चादर डाल दी जाती है ना तो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। सो आई तो लव इट। खैर भाई तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे सिब्बी ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मेरा प्लान ये होता है कि मैं इस दौरान ना कराची के काफी जगहों पर जाऊं और जरूर सिब्बी जरूर देखकर आऊं, क्योंकि सिब्बी तो मेरे मोस्ट फेवरेट तरीन गायों में से एक है। ऑल राइट जी, तो ये तो हो गई बकरीद की बात। इसी के साथ साथ हमारे लिसनर्स के मैसेजेस भी आ चुके हैं, और मैसेज आ चुका है रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं जी हम। कहते हैं अच्छा जी, कहते हैं कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहते हैं मैं गुड हूं, कल आपके लिसनर शो में आपका इंतजार कर रहे थे। ओ यस, आज इनके लंच में है तोरी मींस तुरैया। कहते हैं कि आपका 2 डेज लंच है, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। तो डील डन रही रशीद खान, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके इस ट्रैक के साथ आएंगे वापस। और 2 डेज का लंच का सवाल आपने अच्छा किया है। कल मैंने क्या खाया था? कल मैंने खाया था, कल आई हैड पराठा विद, यू नो, मैंने शायद आप लोगों को कभी रेसिपी इसकी बताई भी थी कि तवे पर आप थोड़ी सी प्याज डालें, हरी मिर्चें डालें, थोड़े से मसाले डालें और उन्हें हल्के हल्के से सॉट करें, मतलब सॉटे करें, और सॉटे करने के बाद ना थोड़े से ऑयल में, और उसको आप पराठे के साथ खाएं तो वो बड़ा मजे का लगता है। तो कल मेरे लंच में ये था और आज के मेरे लंच में पुलाव है। सो 2 दिन का लंच हुआ जाता है मुकम्मल। तो ये तो हमने अपना लंच बता दिया रशीद खान, वैसे आपका भी 2 डेज का लंच रह गया क्योंकि कल आपने हमें मैसेज नहीं किया था, तो आपके लंच में क्या था ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने, बातें वापस ट्रैक के साथ।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर

यस माय फ्रेंड, सो आई एम बैक। और भाई रशीद खान ने हमसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी जो कि आप लोग सुन रहे थे, और इस ट्रैक के बाद हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। और गर्मी थोड़ी कम है लेकिन गर्मी है, और इस दौरान मैं आप लोगों को ये बात जरूर कहूंगी कि जैसे हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा पानी पीना इस दौरान इज टू गुड, वैसे ही आप और लोगों का भी इस दौरान ख्याल रखें। मैंने देखा है कि जगह जगह लोगों ने जो है वो कूलर रखे हुए हैं, और इसी के साथ साथ आप भी ऐसा काम जरूर करें जिससे लोगों की मदद हो, और लोगों के साथ साथ परिंदों के लिए जरूर आप लोग जो है वो इस वक्त पानी का एहतमाम जरूर करें, या तो अपनी छत पे रखें या अपनी गैलरी में अगर थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा ऐसा स्पेस जरूर आप क्रिएट करें कि उन्हें जो है वो पानी मिले। तो इस दौरान ये सारे जो काम हैं ये बहुत जरूरी हैं, और आपने इस दौरान इन सारे कामों को जरूर जरूर करना है। जानवरों की मदद के लिए आपने जो है वो पानी रखना है, और भी आप बहुत सारे तरीकेकार हैं जिसके जरिए आप इस वक्त लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, पानी की सूरत में, कोई शरबत की सूरत में, कोई टैंक की सूरत में। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये जरूर चाहूंगी कि हम इंसानों से ज्यादा ना इस दौरान इन बेजुबान जानवरों की जरूर मदद करना चाहें, बिकॉज उन्हें कितनी प्यास लग रही है, वो किस टाइम से गुजर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, वो तो बोल भी नहीं सकते। तो अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर ऐसा करें कि अपनी छत पर या फिर अपनी गैलरीज में ऐसा बंदोबस्त जरूर करें। अब मिट्टी के प्याले मिलते हैं, उसमें आप जो है वो पानी डाल के रखें। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज भी जिस पर आपने गौर फिक्र करनी है कि जो पानी आप जब डालें तो ये भी देखते रहा करें कि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है या नहीं, बिकॉज अक्सर औकात ये भी होता है कि हम रख देते हैं और धूप की तपिश से वो पानी बड़ा गर्म हो जाता है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो, तो ये भी आप जरूर देखते रहें। अगर आपने अपनी गैलरी में लगाया तो ये आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो इन चीजों का आपने जरूर ख्याल रखना है। इन गर्मियों में आप लोग ये काम जरूर करें, और बिल्कुल करें, और लोगों को ये मशवरा भी दें कि ऐसे काम जरूर करें, ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये था एक और पैगाम जो मैंने कहा चलो जी अपने सुनने वालों को ऐसे चलते हैं, और इसी के साथ साथ हम चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे. लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365. This is your music.

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के कुछ करीब आ चुका है। तो ताजा तरीन सूरत हाल तो बिल्कुल यही है, और जब वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो हम कहते हैं कि भाई इस दौरान ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स अपने तमाम सुनने वालों को सुनाते हैं। तो चलें जी आपको वारिस बेग की आवाज सुनाते हैं और इसके बाद वापस आते हैं।

Edirne Bağ.

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan. And janab, aap sun rahe hain Jane Nina Radio. And aap logo batate chalein, it's a request based show. So today is a Wednesday and 20th of May. आप लोग को बताते चले इट्स रिक्वेस्ट बेशो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट हैव केच आई देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और इसे 3-6-3-6 पर भेज देना है. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें पेज पे भी कॉमेंट कर सकते हैं facebook.com/orchid.jasmine पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं. और अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सो आप वहां पर भी कर सकते हैं. तरीकेकार बहुत ही आसान है. So, janab, meanwhile, we are moving on towards the first track of the show. And this is going to be the OST of Fitur. Milte is gaane ke baad hamare saath rahiyega. Messages karte rahiye 3636 par. And page pe bhi jaate hain to comment kar sakte hain aap on facebook.com/orchid.jasmine.

your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log hame messages kar rahe hain 3636 par. Tareekekar bahut hi aasan hai, just type KHY then leave space, aapka message, aapka naam, aapki request aur usse 3636 par bhej sana hai. Aap log batate chalein facebook.com/orzit aur jasmine pe bhi aap hame comments kar sakte hain and jo bhi aap apna favorite track sunna chahte hain, you're most welcome for that. You can comment us on my page. कोई भी गाना है, कोई रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल जो है वो हमें बता सकते हैं. ओके जनाब, सो ब्रेक का टाइम आ रहा है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: It's number one music station. FM 100.
3: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने. Schwabe Single Remedies जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद.
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
6: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
7: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत

0: your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: ए दुनी दो दो दुनी सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: प्लाट बनाए फरो।
7: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: 100 FM।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
10: This program is brought to you by
11: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
10: 100 FM।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
10: This program is brought to you by
11: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
12: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छर
10: 24/7/365
13: FM 24/7/365।

0: So, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली है क्या।
1: देखिए, मैं इस बात से शुरू करता हूं। एक हजारों साल पहले जनरल थे, चाइनीज जनरल, लाओ त्सु नाम था उनका, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी एक किताब। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो सबसे खतरनाक दुश्मन है आपका वो है जो छुपा हुआ हो।
0: बिल्कुल।
1: तो हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, ये छुपा बहुत है।
0: एग्जैक्टली।
1: जिस्म के अंदर मुख्तलिफ वार करता है, मुख्तलिफ आजाद जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, आंखों को, दिल को, गुर्दों को, और ये अंदर ही अंदर खोखला कर देता है इंसान को।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे जो खतरनाक बात है, इसके सिम्टम नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं, तो पता नहीं लगता। तो आप जरा सवाल रिपीट कीजिएगा।
0: नहीं, कोई मसला नहीं है। सवाल मिली गया कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है।
1: देखिए, जो खून का प्रेशर होता है आर्टरीज में, वेव मिनी आर्टरी में, पर सरफेस एरिया ऑफ द आर्टरी, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसे मेजर करने का एक खास तरीका होता है, हम उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आम इस्तेमाल में आप ब्लड प्रेशर का आला कह सकते हैं। उसमें कुछ आदाद होती हैं जो कि याद रखने चाहिए। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो ऊपर का 120 और नीचे का 80 या इससे कम होना चाहिए।
0: सही।
1: अगर आप दवाइयों पे हैं तो 135 और 85 जो है इससे भी नीचे हो तो एक्सेप्टेबल है। अगर 140 90 से ज्यादा हो और अक्सर औकात हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। और ये है जिसको इलाज की जरूरत है।
0: सही
1: जी।
0: सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता होगा कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो स्टार्ट हो गया है, और बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि उनको नहीं समझ आ रहा होता, मतलब कुछ ऐसी अलामत होती हैं जैसे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, आपको ब्लरी विजन स्टार्ट हो गया दिखना, और आपको मतलब इतना ज्यादा जब गुस्सा आ रहा है तो वो सर की वेन्स फूल रही है या इस तरह के कुछ हो रहे हैं। तो हम आज हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, कि बेसिकली ऐसे क्या मेन सिम्टम्स हैं जिससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जो भी पेशेंट है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है।
1: जी, अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी ड्रामाई सिम्टम्स या साइंस नहीं होते कि वेन जो है वो फट गई है या वो धड़क रही है माथे पे और पता लग जाए कि जी हाई ब्लड प्रेशर है। दो तीन चीजें हम सबको मद्देनजर रखनी चाहिए और जहन नशीन करनी चाहिए। एक ये कि पांच बड़े रिस्क फैक्टर हैं दिल की बीमारी के लिए।
0: सही।
1: एक है हाई ब्लड प्रेशर, एक है डायबिटीज, तंबाकू नोशी, तंबाकू किसी सूरत में भी, खानदान में अगर हिस्ट्री हो, और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर एक मरूसी बीमारी है, ये ऐसी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गई तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये मरूसी बीमारी है। तो जो हाई रिस्क हैं अफराद जिनके खानदान में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो उनको वक्तन फवक्तन अपना फॉलोअप कराना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाकर।
0: सही।
1: ये जो आपने बताया ना, अक्सर औकात लोग यही समझते हैं कि किसी को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या किसी को सर में दर्द अक्सर हो रही है तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या कोई वेन धड़क रही है कहीं पे। ऐसा नहीं होता, इसके बिल्कुल बरक्स है। जब ऐसी कोई कैफियत होती है तो लोग उसी वक्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उस वक्त वक्ती तौर पे बढ़ा हुआ होता है तो वो समझते हैं कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है।
0: सही
1: ब्लड प्रेशर रीडिंग उस वक्त आती है जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हालत में हो।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है। और अगर ये चीज आप घर पे कर सके, रिलैक्स्ड हालत में अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें तो, और उसकी तीन चार रीडिंग आप ले लें, तो आप काफी रिलायबली तशखीस कर सकते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। एक इसका गोल्ड स्टैंडर्ड भी है इसकी तशखीस का, उसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एक आला है जो लग जाता है, आप अस्पताल से लगा के फिर आप घर चले जाते हैं, 24 घंटे वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है सोते जागते, और आपको पूरी ब्लड प्रेशर प्रोफाइल दे देता है। ये हर एक के लिए दस्तयाब नहीं है, तो जो सेकेंड बेस्ट थिंग है वो ये कि आप घर पे अगर चेक करें तो आपको सही पता लगता है।
0: सही।
1: एक और टर्मिनोलॉजी है नहीं, उसे हम कहते हैं ऑफिस ब्लड प्रेशर।
0: ऑफिस ब्लड प्रेशर
1: जी जी, यानी कि आप डॉक्टर क्लिनिक में गए वहां पे ब्लड प्रेशर चेक हुआ, अक्सर औकात वो ज्यादा होता है, वो सही अक्कासी नहीं करता मरीज के सही ब्लड प्रेशर की
0: सही।
1: तो ये अब एक फरसूदा चीज हो गई है कि आप अस्पताल जाएं या आप डॉक्टर क्लिनिक जाएं और अपना ब्लड प्रेशर
0: चेक करें सही।
1: तो बेहतर है कि आप अगर आप एट रिस्क हैं तो एक अच्छी मशीन घर में रखें और होम मॉनिटरिंग करें और आप सिम्टम्स पे ना जाएं कि अगर सर दर्द हो रही है और खासतौर पर गुस्सा आ रहा है बार बार, तो वो कोई और बीमारी हो सकती है जिसमें गुस्सा बार बार आ रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन नहीं होती वो।
0: सही सही जी। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने एक मतलब जैसे अभी ऑफिस ब्लड प्रेशर के हवाले से आपने एक नई टर्म बताई है डॉक्टर साहब, तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर कभी कभार सही इस वजह से भी चेक नहीं हो पाता है कि कुछ पेशेंट्स को कोई ऐसी टेंशन होती है जो शायद वो कंटिन्यू उनके साथ चल रही होती है, जिससे आई गेस उनके लिए वो इतना मुश्किल हो जाता है उस चीज को, उस बात को, उस टेंशन को ओवरकम करना कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल नहीं रह सकते।
1: देखिए हॉस्पिटल जो है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए तो मतलब घर की तरह ही है ना।
0: एक्जैक्टली।
1: लेकिन आम पब्लिक के लिए, मरीजों के लिए बहुत खौफनाक जगह है।
0: बिल्कुल।
1: और जब आप वहां जाते हैं तो काफी घंटों तक खौफ में मुब्तला रहते हैं, उसके दौरान अगर ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाए तो वो फॉल्सली हाई, इसी वजह से होम मॉनिटरिंग जो है वो हाँ वो उसको प्रेफर किया जाता है, यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग।
0: सही, जबरदस्त। साथ में डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्लड प्रेशर की क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से जो है ये जो है वो आप इस बीमारी का शिकार होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों को हम अवॉइड करेंगे, ऑब्वियसली इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन कॉज हम जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है।
1: देखिए दो किस्म के हाइपरटेंशन होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी।
0: सही।
1: सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो है लेकिन बीमारी कुछ और है, जैसे हार्मोन की ज्यादती है या कोई शरियान बंद हो रही है, जैसे गुर्दे की शरियान बंद हो रही है। ये पॉपुलेशन में सिर्फ 2% होता है, 98% होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन या जिसको असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते थे पुराने जमाने। इसका कोई एक कॉज नहीं होता, ये मौरूसी होती है, बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज मिलकर इस हाइपरटेंशन को जन्म देते हैं। तो अगर किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन हो तो हम वक्त जाया नहीं करते कि क्यों है, ये मौरूसी है, उसको सिर्फ कंट्रोल करना होता है ताकि जो लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपरटेंशन के वो ना हो। अब थोड़ा सा मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूं कि जो बड़े बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल्ड, सबसे पहले है फालिज। सबसे ज्यादा जो बुराई इस वजह से होती है वो दिमाग की शरियानों में होती है, या वो ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं, जिससे फालिज होता है। उसके बाद हार्ट अटैक, बीमारी का चला जाना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर से होता है। किडनीज खराब हो जाना, ये भी। और जो ऐसी शरियाने जो कि टांगों को ब्लड सप्लाई कर रही हैं या किसी और, उनकी ब्लॉकेज जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर से हो सकती है। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसका तो आपको कॉज पता लग जाता है अगर आप टेस्ट्स वगैरह करें कि कोई हार्मोन की ज्यादती है या कुछ और है, उस चीज का आप इलाज करें तो वो हाइपरटेंशन पूरी तरह सही हो जाती है। लेकिन जो 98% लोगों को है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, उसमें आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल कर लें तो जो बहुत सारे एडवर्स इवेंट्स हैं जो कि आगे हो सकते हैं उस मरीज को, उससे बचा जा सकता है।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम हाइपरटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, बहुत से लोगों में एक ये चीज एक कंफ्यूजन रहती है कि हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली अलग है एंड हाई ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली वो एक अलग चीज है। तो ये थोड़ा सा मैं इसकी क्लैरिटी चाहूंगी, क्योंकि वो हाइपरटेंशन अक्सर लोग ना इस सेंस में ले जाते हैं कि हाइपरटेंशन इज बेसिकली कि हमने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, टेंशन में ज्यादा चले गए।
1: एक सवाल पूछता हूं
0: जी,
1: कि भारत और इंडिया में क्या फर्क है?
0: सेम।
1: सालगिरह और बर्थडे में क्या फर्क है?
0: कोई फर्क नहीं है, सेम है।
1: और सेब का मुरब्बा और एप्पल पाई में क्या फर्क है?
0: सेम
1: ऑपोजिट। हाइपरटेंशन ज्यादा फैंसी तरीका है कहने का ब्लड प्रेशर को, ये दोनों एक ही दुश्मन के नाम है।
0: बिल्कुल। अच्छा अब एक चीज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं नमक के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर एंड नमक। तो सबसे पहले जैसे कोई भी ऐसा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है वो जाता है डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले उसके लिए नमक और चावल, ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कट ऑफ की जाती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताया मैं लिस्ट।
1: देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि चावल कम खाने से ब्लड प्रेशर में, चावल से कुछ नहीं होता। ठीक है अगर डायबिटीज है तो एक खास मिकदार आप खा सकते हैं चावल की, उससे ज्यादा नहीं। बता नमक जो है ये एक बहुत बड़ा आप समझिए एक तरह से जहर है जो हाइपरटेंसिव है उनके लिए।
0: सही।
1: एक खास अमाउंट नमक की अलाउड होती है उन्हें, लेकिन अब आप फर्ज कीजिए कोई ओपीडी में आता है आप उसे कि जी 100 मिली मोल्स आपने लेने हैं, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, जाहरी बात है। एक अगर आम फहम जुबान में एक अगर एक जनरल रूल अगर आप बता देना तो उससे ही बहुत फायदा होता है। जैसे आप मरीज से कह दें कि 10% कम कर लो नमक जो आप खा रहे हो अभी, आप रोटी में या आटे में अलग से नमक ना डालो, अगर आप फल या और चीजें ऊपर से आप नमक ना डालें और 10% कम कर दें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें स्पेशली फास्ट फूड है जैसे, या ये चाइनीज सॉल्ट होता है। अच्छा नमक जो है ये दो चीजों से बनता है, सोडियम और क्लोराइड। तो इसमें जो एंटिटी सोडियम, सोडियम कैट आयन्स, ये ब्लड प्रेशर के लिए मुजर हैं। ये चाहे सॉल्ट में हो चाहे किसी सीरियल में हो सोडियम कंटेंट उसका, या ये जो सॉल्ट होता है चाइनीज सॉल्ट उसमें सोडियम एंटिटी उसकी वजह से भी, तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में।
0: सही सही। हम अपने लिसनर्स को बताते चले कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस एंड विच इज ब्रॉट टू यू बाय एटको एंड इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी। डॉक्टर फैसल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है अपने शो पे बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, ये बताइए कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों में क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि एक कॉमन चीज होती है अटैक करती है। जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये।
0: जी
1: गुर्दों का आप ऐसे समझिए इसका फिल्टर है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: हमारी बॉडी का
1: जैसे फिल्टर है, गंदा पानी जा रहा है और जो उसमें गंदगी है वो हट रही है और बाहर जो है वो साफ, इस तरह समझ लीजिए। तो खून ले जाने की एक होती है आर्टरी जो कि गुर्दे में खून लेके जाती है एक खास प्रेशर पे, और वहां से खून लेके एक वेन आती है। ठीक, बीच में गुर्दे होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर से मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, वो जो आर्टरी जो खून लेके जा रही है उसमें ब्लॉकेज आ सकती है, तो फिर खून पूरी तरह पहुंचता नहीं किडनी को। एक खास रेट, एक खास मिकदार जरूरी होती है हर मिनट या हर घंटा कि वो किडनी को मिले। अगर वो ना मिले तो किडनी छोटा होने शुरू हो जाती है, किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर से कुछ हम उनको पैरेन्काइमल चेंजेस कहते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए जैसे ईंटें होती है ना किसी बिल्डिंग की, इस तरह मुख्तलिफ खलिये होते हैं जो बनाते हैं गुर्दे को। तो हाई ब्लड प्रेशर से उनकी टूट फूट, उनकी सोजिश, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं उसको। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना हो तो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, या शरियानों के बंद होने से या एक्चुअल जो गुर्दों का पैरेन्काइमा है उसको खराब करने से। और जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो अपना पूरा काम नहीं कर पाते, तो जो हाई ब्लड प्रेशर है वो मजीद हाई हो जाता है, एक विशेष साइकिल बन जाती है। जी
0: सही। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम साथ होते हैं, मोस्टली साथ पाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज को भी बड़ा पूछा जाता है कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि उसको डायबिटीज भी हो गया, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होगा, इस हवाले से थोड़ा सा बताया मैं लिस्टनर्स को।
1: देखिए ये बहुत कॉमन एक एसोसिएशन है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से डायबिटीज नहीं होती, ना ही डायबिटीज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है।
0: सही।
1: ये हमारी मौरूसियत, हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि अगर एक चीज होती है

0: लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से डायबिटीज नहीं होती, ना ही डायबिटीज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है।
1: सही।
0: ये हमारी मौरूसियत, हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि अगर एक चीज होती है तो ज्यादा रिस्क होता है कि दूसरी भी हो, यानी कि हमारी जीन्स अगर डायबिटीज करने की है तो ऐसा भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर करने की भी होती है। एक तरह से आप कोइंसिडेंस समझिए, लेकिन एक बीमारी दूसरे को नहीं करती। जैसे डायबिटीज दिल की बीमारी कर सकती है,
1: सही,
0: हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी कर सकता है,
1: सही,
0: उस तरह ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं करता, ना ही डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर करती है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ अगर हो जाए ना, तो जैसे समेशन होती है कि एक जमा एक दो, एक होती है ऑगमेंटेशन, एक जमा एक इज इक्वल टू 11, तो ये दो जब मिलती हैं तो ये बहुत सख्त तबाही करती हैं। ये 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता, ये होता है 1+1 इज इक्वल टू 100। जो रिस्क है बीमार होने का, आंखों की बीमारी या दिल की या फालिज, वो अगर दोनों एक साथ हो तो वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: सही सही। डॉक्टर साहब, आपने आंखों की बीमारी के हवाले से बात की, अभी मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी अबाउट आई डिजीजेस। तो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आंखों को किस तरीके से डैमेज कर रहा होता है और किस लेवल पे आके, मतलब इस चीज का अंदाजा, मोस्टली जो है ब्लरी विजन स्टार्ट हो रहा है तो हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद हमारे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, आई साइट वीक हो रही है, तो ये जो है ये किस स्टेज पे आके ये चीज पता लग रही होती है कि ज्यादा आंखें खराब हो गई हैं खुदा ना खास्ता हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये किस तरीके से स्टार्ट करता है आंखों को खराब करना?
0: आंखों को आप समझिए जैसे कैमरा है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी। रोशनी जो है वो एक छोटा सा एपर्चर होता है, पीपल कहते हैं, उससे अंदर जाती है, लेंस उसको फोकस करता है और पीछे आंख का पर्दा होता है रेटिना।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे ये जाके लगती है और वहां से फिर सिग्नल जाते हैं दिमाग में और इमेज बनती है।
1: सही।
0: अच्छा, ये जो आंख का पर्दा है इसको भी जरूरत है खून की, तो इसकी भी ब्लड सप्लाई होती है, इसको भी आर्टरीज सप्लाई करती हैं, वेन्स इसे लेके जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो मुख्तलिफ चेंजेस आना शुरू हो जाती है उन आर्टरीज में, कुछ आर्टरीज फट जाती हैं, रेटिनल ब्लीड हो जाती है, एक्सीडेंट से खास एक टर्म है वो, तो जो आंखों के जो पर्दा है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होती है तो खराब होता जाता है। यहां पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की दो बहुत ही डिस्टिंक्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं।
1: ओके।
0: एक होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि एंड ऑर्गन डैमेज हो गई। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि बैठे बैठे आंखों की बिनाई जाती रहे।
1: ओके।
0: इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये बहुत कम लोगों को होती है, इसकी इंसिडेंस काफी कम है।
1: सही।
0: ब्लड प्रेशर अक्सर लोग आते हैं 160 100 है और परेशान होकर आते हैं कि जी हमें एडमिट कर लें। ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर हो और एंड ऑर्गन डैमेज हो तो फिर ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जैसे बिनाई चली गई या इतना ब्लड प्रेशर ज्यादा है कि फालिज हो गया या इतना ज्यादा है कि हार्ट फेलियर हो गया।
1: सही।
0: तो ब्लरी विजन अगर है तो जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत ही कम चांस है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो। यहां तो जैसे नजदीक की नजर खराब हो गई या दूर की नजर, वो रिफ्रैक्टरी एरर हो सकता है, या फिर ये जिनको डायबिटीज होती है,
1: सही,
0: अगर उनकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो उनमें हो सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लरी विजन होना बहुत ही कम चांस है इसका।
1: सही। डॉक्टर साहब, जैसे सबको पता है ऑब्वियसली बकरा ईद जो है वो करीब है और अब बहुत से लोग इसमें बदपरहेजी भी करते हैं, यानी गोश्त की तरफ उनका रुझान काफी ज्यादा हो जाता है रेड मीट के हवाले से, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रेड मीट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके थोड़े नुकसान, ऑब्वियसली नुकसान के बारे में, फायदे भी हैं लेकिन ऑब्वियसली जिसको बीमारी है तो उसके लिए वो चीज नुकसानदेह भी हो सकती है, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आप बताएं थोड़ा हमारे।
0: एक जमाना था बहुत पहले
1: जी,
0: जब पाकिस्तान बनने से पहले जब मैं MBBS कर रहा था, खैर ये तो मजाक से कह रहा हूं, एक जमाना था जब गिजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फोसिस था,

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
0: number one music station. FM 100. 100. 100.
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
4: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
5: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
8: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jail, across Pakistan. This is FM

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
1: This is FM 100. FM 100.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
5: FM247365.
6: Listeners tell us about FM 100.
7: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
8: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
6: Number one music station. FM 100. 100. 100.
9: Your favorite number. Number. On my fingertips. Catch your favorite number within no time.
10: No time.
9: Genie in a radio.
10: Genie in a radio.
9: With your very own RJ, Jasmine. Jasmine.

Alrighty guys, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and aap log bilkul hame messages kare 3636 par and tarike kar bahut hi aasan hai. Just type kh shayad and leave space aapka message, aapka naam, aapki request aur 3636 par bhej sana hai. Jaipal, thank you so much for your messages. Kafi der se aap log ke messages aaye hain hamare paas and page pe bhi hamare paas request aayi thi to wo humne Sami ki request ab include ki thi, meri zindagi hai tu ka OST. And Jaipal, thank you so much for your message aur really appreciated. Aap show sun rahe hain, show पसंद कर रहे हैं, शो की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ साथ जो है वो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम एक काम करेंगे, हम अभी जो है वो आपके कुछ कमेंट्स इंक्लूड कर लेते हैं विच इज ऑन आवर पेज ऑन facebook.com/archer.jasmine. और ऑब्वियसली वहां पे आप लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं तो आप बिल्कुल कोई भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 3636 पर अगर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं तो आप लोग facebook.com/rj.jasmine यहां पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं जो कि काफी हमारे पास आ रहे हैं. समी शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, रियली अप्रिशिएटेड. मेरी जिंदगी है तू का ओएसटी हमने प्ले कर दिया था एंड वी हैव गॉट अ कमेंट हियर फ्रॉम फारूक. वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसे हैं मिस्टर फारूक. एंड कह रहे हैं कि कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग लगा दीजिएगा. चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आपके कमेंट का. इट्स 43 minutes past 3 ऑन द डायल राइट नाउ. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाते हैं पर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर.

0: Listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: It's 2:45 p.m. This time check is brought to you by
4: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
5: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: 100 FM
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
7: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

Cha-cha. That we come to run things on the road. See?

Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोगों को बताते चलें कि शो का टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह गया है एंड इट्स 53 मिनट्स पास्ट 3 ऑन द डायल राइट नाउ विच मींस कि हम थोड़ी सी देर में साइन ऑफ करेंगे facebook.com/rz.jasmine पे हम आपको बताते चलें कि आप बिल्कुल अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो टॉपिक भी बता सकते हैं ऑल्सो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं और 3636 पे भी आप लोग मैसेजेस हमें करते रहते हैं लेकिन वहां पे आप बिल्कुल कर सकते हैं यू आर डेफिनेटली ऑल अलाउड टू गिव एनी सजेशन और एनी टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल टॉपिक सजेस्ट करें क्योंकि हम अपने शो पे जो है जो हमें सबसे अच्छा टॉपिक सजेस्ट करेगा उसका टॉपिक हम रखेंगे भी और उनके नाम से हम रखेंगे ओके सो अपना रखिएगा बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल इंशाल्लाह आपसे हम कल मुलाकात करेंगे 2 से 4 सुना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सो दिस हैज बीन मी जैस्मिन आई एम सेइंग गुड बाय टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: Like us on facebook.com/fm247365.
4: FM247365. FM 100.
5: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum Pakistan.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर गाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
7: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
8: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
9: रास्त
10: रास्त।
11: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
12: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
13: FM247365। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: Like us on facebook.com/fm247365
2: FM 247365

0: in the rhythm of life. When you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगी का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगी से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: your location for maximum music. In the rhythm of life, when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. You can listen longer. Music flashes in my head. FM 100. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं. शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार. मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी कराची चैप्टर के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से ब्लड प्रेशर की आगाही के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ. ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है. आप इसको अगर सही नमूने से तशखीस, सही नमूने से उसका इलाज और बर वक्त उसका इलाज करेंगे तो आप हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दों की बीमारी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तमाम चीजों से आप निजात हासिल कर सकते हैं.
7: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
4: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.
8: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
9: नई स्कीम,
10: कमिटी,
11: प्लाट बनाए फरो.
12: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो. इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
4: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर गाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
1: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: एंड
7: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: एंड
8: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
9: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: ने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार। मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी कराची चैप्टर के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से ब्लड प्रेशर की आगाही के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। आप इसको अगर सही नमूने से तशखीस, सही नमूने से उसका इलाज और बर वक्त उसका इलाज करेंगे तो आप हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दों की बीमारी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तमाम चीजों से आप निजात हासिल कर सकते हैं।
6: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: Rast. आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात, कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
6: किसने कहा था पैसे बचा।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
0: तब तक मेरी कुर्बानी के

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सो ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: प्लाट बनाए फरो,
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
10: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: इच्छितमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
8: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
4: एंड
9: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
10: Like us on facebook.com/fm247365
11: fm247365
12: The best sound processor, FM 100.

0: बड़ा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी कराची चैप्टर के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से ब्लड प्रेशर की आगाही के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, आप इसको अगर सही नमूने से तशखीस, सही नमूने से उसका इलाज और बर वक्त उसका इलाज करेंगे तो आप हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दों की बीमारी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तमाम चीजों से आप निजात हासिल कर सकते हैं।
4: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: किसने कहा था पैसे बचा?

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
1: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: एंड
7: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
1: एंड
8: डेटॉल फूल सो, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ऊपर से हाथ उठाना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
2: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम
1: कमिटी
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
0: and
2: Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave.
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
6: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
3: And
7: payment usool kare haath ke haath. बड़ा हिरास
3: एंड
6: डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
8: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं. शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद.

0: समर्स में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लांट बनाए फरो,
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
6: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
8: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: की टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 24/7 365. Bumper to bumper, only on FM 100.

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Filter. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.

0: अब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
1: किसने कहा था पैसे बचा।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: तौहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फ़िरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौइयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
4: FM 24/7 365
5: 100
6: Evening Drive Time with

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja,
3: Phoenix laga aur bhul ja. हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
5: नई स्कीम
6: कमिटी
7: प्लाट बनाए फरो
8: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
9: Ek duni do do duni chaar sahi intikab ke inamat dhai hazaar.
10: Agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2,500 se zyada inamat. Ek duni
9: do do duni chaar
11: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
12: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: पेश किया गया।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: the country's number one choice for the best music variety.
1: Best music variety.
0: FM 100. This party jams.
1: This party jams.
2: FM 100's time check. It's 8 p.m.
3: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365

जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے۔ Evening Drive Time with DJ Grisella.
2: By Christy Burke. It's a romantic touch, The Lady in Red.

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: बैन अल-अक़वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी। एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी। आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वज़ारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM

मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।

0: कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

अच्छा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों दोस्तों और सज्जनों, दिस इज योर गुड फ्रेंड मोहम्मद अली शेख स्पीकिंग टू यू डायरेक्टली फ्रॉम एफएम 100 स्टूडियो नेटवर्क एंड Yes, as you know, this is Wednesday, the 20th of May, 2026, and I'm here speaking to you from Karachi. Weather is okay. It's been hot, of course, it's been very hot, but now today was, weather is a bit relaxed. Well, this program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. And I desire to be satirical, humorous, and funny. Think of me as a little living, breathing cartoon. None of the words spoken in the show are to be taken too seriously to be true, and you must verify things heard in the show from an existing respectable source to be true. The writers and anchors of the show played in Sunday such a buzz cannot be held responsible if some words are just too spicy or hurting to you. You may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance strongly advised. So, without much ado, हम करते हैं इस शो को शुरू. चूंकि आफाक भुट्टो साहब जो है ना हमें वॉच कर रहे हैं, आफाक अहमद भुट्टो साहब कहते हैं सलाम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी इंशाल्लाह ठीक हो, खुश हो, आबाद होंगे इंशाल्लाह. अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके. अरे यार, मैं तो समझता था यार ये गाना जबरदस्त सॉन्ग है, वान जलेबी.

यह प्लेलिस्ट जो है हमारे दोस्त जो कि साउंड इंजीनियर भी हैं सुपरवाइज करते हैं शो को गुफरान साहब ने एनालिस्ट किया है। थैंक यू गुफरान।

0: रेट्रो रिवाइव
1: प्यार की राह पे चलने वालों
2: मगर पता है क्या कि कहा जाता है कि 90% ऑफ द मैरिड वुमेन डू नॉट लव देयर हस्बैंड्स दे आर जस्ट हैप्पी टू बी मैरिड
1: सारा जंगल
2: मॉडर्न मैरिज इज नॉट अबाउट लव इट्स अबाउट कन्वीनियंस इट्स अबाउट सिक्योरिटी इट्स बिकॉज It is about validation of a woman's loyalty. Woman's loyalty is conditional, where her faithfulness is temporary, her devotion is only as strong as an option. मैं बाकी बातें करता हूँगा ताहिर साहब ताहिर यासीन खान डॉक्टर ताहिर दिस साइड प्लीज डॉक्टर ताहिर दिस मैसेजेस आर फॉर यू टू हियर यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स आई विल बी बैक
3: for maximum music.

0: This is your music.
1: ये तो बातें होती रहेंगी. ये रैप जो है जनाब, रैप इज पार्ट ऑफ द सॉन्ग. इट कैन नॉट बी जस्ट रैप, क्योंकि ये रैप जो बंदा गा रहा है, पूरी किताब गा जाएगा ये गाने में.
2: जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, कभी है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर. नजर सारी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती. छाओ में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से आते हैं लगातार लहू की तरह. अब खाए जाएं ये दरों,
1: आफाक अहमद साहब आप तो देख रहे हैं क्या.
2: घर भी घर अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना, आज भी रही एक दिल में खला. फिजा भी आई बर्बाद और दिल तबाह भी रहा ना हरा. तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना. तू मुझे देखे इंसान, बाकी सारी दुनिया को
1: हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं.

0: Planet FM, your location for maximum music.
1: आप लोग देखना पूरी किताब पढ़ जाएंगे एक गाने के अंदर, मगर क्या बात है, ये भी एक आर्ट है. There's also something good, you know, part of the song. अच्छा जनाब, इससे पहले क्या आप लोग बोर हो जाएं, एक और गाना सुनते हैं जबरदस्त सा.

This is Gasolina Daddy and Yankee DJ Shakes. Whoop. DJ Shake.

I have this messages khul gaye mashallah se aur likha hai Shaggy bhai adab karta hoon taslimat please apna sound nazar teri jalwe suna de bahut old version चल ओल्ड वर्जन में वैसे ही गा के सुना देता हूँ नजर नजर तेरे ही जलवे जुबा जुबा तेरे ही चर्चे नजर नजर तेरे ही जलवे जुबा जुबा तेरे ही चर्चे मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीर मेरे ख्वाबों को मिली आज ताबीरें हो तेरा मेरा साथ हो ऐसे जुबा जुबा तेरे ही चर्चे हो तेरा मेरा साथ हो ऐसे जुबा जुबा तेरे ही चर्चे जुबा जुबा तेरे ही चर्चे सलमा जुबा जुबा आपके ही चर्चे वजह ये कि कंप्यूटर्स में खराबी हो गई थी कोई बहुत बड़ा बारिश आ गया था सारे कंप्यूटर्स में जितने गाने थे हमारे बॉक्सेस वगैरह सब इरेज हो गए दोबारा से इन्होंने गुजरान साहब ने भी कोशिश की कुछ रिकवर हो गए कुछ न हुए इस वजह से मैं अपने गाने सुनाने से कासिर हूं मगर फायदा यह है कि मैं खुद गाने वाला हूँ यस अगर गाने नहीं मिलते तो मैं खुद गा देता हूँ लाइव

वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. उसे कहते हैं शेगी भाई आधा तस्लीमा प्लीज अपने सॉन्ग में नजर नजर तेरी ही जलवे मैंने खुद गा दिया, इसलिए कि वो सॉन्ग जो है ना इरेज हो चुका था. हमारे कंप्यूटर से एक वबा आई थी और इरेज कर गई सब कुछ, इसलिए साइमा साहिबा मैंने खुद वो ऑडियो जो है ना लाइव गा दिया था. नजर नजर तेरे ही जलवे साइमा जी, जुबान जुबान तेरे ही चर्चे, मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीर, मेरी ख्वाबों को मिली आज आज ताबीरें.

तो उम्मीद है आई एम सॉरी सॉन्ग जो है ना मुझे नहीं मिल सकता इस वक्त, वो इरेज हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरी छोटी सी कोशिश। अरे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, जब मैं छोटा था तो अकेला 5 लोगों की आवाजें निकाल दिया करता था, मगर मेरी शादी हो गई तो अपनी आवाज भी बंद हो गई। भाई साहब इसलिए कि जब भी बोलता हूँ तो उधर से चिमटा आता है और कभी बेलन आता है। आज तो जान बाल बाल बच गया, इसलिए कि सिलेंडर मार दिया उनके खींच के, मगर मैं बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा लिया। ये जबरदस्त सॉन्ग आतिफ असलम का, ये तेरा हुआ।

this is the truth. Well, I'm going to say something and then say goodbye to you. They should never be honest with a woman. Never tell the whole truth. This is an art you must perfect as men. You have to learn the ancient art of half-truth. Women have been playing this game since the dawn of history. The dawn of history, of course, but you guys have not. Because man brought the idea of honor, and between men, that's very powerful. And with this, thank you very much. Thank you for... और थोड़ा सा प्रोग्राम मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि और ये सारे गाने जो इरेज हो गए हमारे उनको रिकवर हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा मामले पे आ जाएंगे. फिलहाल आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह अगले वेनसडे को आपसे मुलाकात होगी. अभी मेरे भाई नदीम अख्तर आपसे मुखातिब होंगे जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं.

0: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने
1: हबीबी।
0: स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक करेंगे खूब हल्ला दे गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के शाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट ग्लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूँ, आप देते हैं उसका जवाब, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को करता हूँ वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। ते पहला गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों भाई, ना जाने क्यों भाई, जिंदगी इसी तरह चल रही है जनाब। अच्छा जनाब, कुछ बात कर लेते हैं, ईद की आमद आमद है, इस हवाले से भी गुफ्तगू कुछ हो जाए। किसी शो में हो ही नहीं, बस ऐसे ही बकरों के कीमतों के हवाले से बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का ही सिलसिला कर लेते। ईद की तैयारी भी होती है, बड़ी ईद की भी तैयारी होती है भाई, और ये बड़ी मोहतरम ईद है हमारे लिए। हज का फरीजा अदा करने के बाद जो है ये ईद मनाई जाती है। तो सवाल भी कुछ जनरल नॉलेज का कर लेते हैं चले इसी हवाले से, क्योंकि हज करीब करीब है। तो हज के हवाले से सवाल ये है कि हज के कुल कितने अरकान होते हैं, और वो कौन से अरकान हैं जो हम ईद मना लेते हैं उसके बाद भी हाजी अदा कर रहे होते हैं। वाह वाह, सोचने वाली बात है ना। तो ईद की तैयारियों के हवाले से सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि भाई तैयारियां शियारियां हो रही हैं भाई, बच्चे जो है ना वो लड़के लड़कियां यंगस्टर भी कुछ भी हो जाए, अभी ईद गुजरी है 2 महीने, मजा लेके उस सूट को हाथ भी लगा ले जो नया एक दफा ही पहना। नहीं भाई, नया चाहिए, कुछ भी हो जाए, जूते भी नए चाहिए, लड़कियों को साथ में जो है तमाम मैचिंग भी जो है वो साथ ही चाहिए। ये सिलसिला भी चल रहा है, तो इस तरह की कोई गुफ्तगू करना चाहे कुछ तो आप वो भी कर सकते हैं, और कुर्बानी के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन पहले कुछ ना कुछ आपके मैसेजेस की जाने पर बढ़ा जाए, और सबसे पहले फीता काटा है हमारे यूसुफ भाई पापोश से। तमाम एफएम 100 की फैमिली को उन्होंने सलाम कहा, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी चाची और उषा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई, खिताब गुल्लाला गुफरान भाई, और हमारे मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा। अच्छा अयूब, ये यूसुफ भाई जो है ये हमेशा जो है ये नाम जो है इनका जरूर जिक्र करते हैं, और इनमें एक नाम जो है वो ऐसा है कि हमारी प्यारी सी बहना जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका जिक्र जरूर करते हैं, गुलबानों का भी जिक्र जरूर करते हैं, खिताब गुल लाला का भी जिक्र जरूर करते हैं, जो कि ये तीनों के हवाले से खिताब गुल लाला, गुलबानों और तमाम डॉक्टर्स ये गायब ही हो गए बिल्कुल ही। तो मेरी वैसे मैं कभी भी किसी को कहता नहीं, ये सबको पता है, क्योंकि हर एक की अपनी मसरूफियात होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है। तो भाई जरा बताइएगा तीनों क्या वजह है भाई, आ जाओ यार, कोई मसला है तो बताओ यार, हमें बैठे हो है ना। आंसे वाली क्लिफ्टन से आ गए हैं, ने सुने हो आपको और एफएम 100 की तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू। और जी आई एम फाइन फाइन, अंग्रेजी में वाह वाह क्या बात है, अंग्रेजी में हाउ आर यू, वाह वाह वाह। और जरीन नूर और रेहान को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। हाय हाय, रेहान भी वही जो मुझे सुन रहा होता है और रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, उसकी बात कर रहे हो या कोई और रेहान है ये भी बताना। अयूब अफरीदी जान जिगर या हबीबी कैसे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माही निगत जीबीएन को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। आम और गुलाब जामुन भरा सलाम, ये आजकल आपको आम और गुलाब जामुन क्यों याद आ रहे, इसमें क्या हकीकत है जरा बताइएगा, यानी कि समझ रहे ना आप। समी शहजादा आज जल्दी आ गया, लगता है आज भाभी से बातें बातें नहीं हुई हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, सलाम टू ऑल लिसनर्स और गुफरान भाई को भी। महंगाई की वजह से कोई भी त्योहार हो वो पहले वाली रौनक नहीं रही। यार मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कहता, रौनकें तो ऐसी हैं कि कमाल है भाई, हर गली में हर मोहल्ले में जानवर नजर आ रहे हैं, हर रोड पर जो है वो गांव देहात से आए हुए हमारे जो भाई बहन हैं, वो भाई बहन कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, वो बकरे और गाय लेकर घूम रहे हैं, ज्यादातर बकरे लेकर घूम रहे हैं, मतलब पूरे पूरे खानदान आए हुए हैं, खवातीन भी आपको नजर आएंगी बेचते हुए, तो ये रौनकें तो नजर आ रही हैं भाई। और आपके लिए तो समी भाई रौनकें दोबाला हुई हुई हैं यार, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। फरीन शहजादी भी आ गई हैं, कह रही हैं हबीबी अस्सलाम वालेकुम, नदीम भाई क्या हाल चाल है आपके, सुनियो हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं जनाब ने बारे में बताओ। मिर्जा साहब आ गए ने, मिर्जा शुजात गुजर खान तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात जनाब,
आज एफ एम 100 की ट्रांसमिशन ओके टेक आ रही है, होए ना गल ओके टेक। और शुक्रिया एफ एम 100 कराची, जीते रहे मुस्कुराते रहे। अच्छा जी, मोहम्मद अली भाई, नदीम भाई, मोहम्मद अली भाई जिनकी आवाज हम रमजान की मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में सुनते हैं, उनको मेरा सलाम। अली भाई की क्या ही बात है यार, मोहम्मद अली भाई की उनकी आवाज क्या बात है। आप अक्सर सुनते हैं जब हम चला रहे होते हैं, अभी आपको सुनाऊंगा उनकी आवाज, किसी ब्रेक में सुना देंगे आप, और आपका सलाम जरूर पहुंचाएंगे यार अली भाई को। और हमारे प्यारे से शहजादे आ गए हैं, कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, एक फरमाइश कर दी है और कह रहे हैं कि एन नवाजिश होगी अगर चल जाए। फिदागुल लाला, नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अयूब आफरीदी और आपके वाजिबुल एहतराम वालिदे मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा कईदत भरा सलाम पेश कीजिएगा, हर लम्हा दुआ गो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफबी एरिया कराची। और इनमें इनके नामों में भी चंद नाम, ये भी हमेशा कॉपी पेस्ट नाम आते हैं इनके, इमरान भाई आजकल गायब है, और कौन गायब है, खुताबुल लाला तो है ही, नसीम कुरैशी साहब जो है वो गायब हैं। तो मैं आज तमाम को बोलूंगा जो रूठे हुए हैं या किसी भी वजह से काफी अरसे से नहीं आ रहे हैं, उनको जरूर बोलूंगा नसीम कुरैशी साहब, लाला जी के बारे में तो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी। नौमान भाई बल्दिया से हैं और कह रहे हैं मैं काफी दिनों से एब्सेंट था, कल आपसे पता चला कि अच्छा जी चाचा के हवाले से बात करेंगे, उनका जो है इंतकाल हो गया, नल्ला व इन्नल्लाहि राजिऊन, तो अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और चाची से गुजारिश है कि हमारी तरफ से ताजियत कबूल करें। हाँ, और आप यकीन माने कि मैंने फोन किया था चाची उस वक्त जब चाचा के इंतकाल हुआ था, तो चाची शायद मसरूफ थी, फिर उसके बाद मैंने वॉइस मैसेज भी किया था और उसका भी मुझे चाची का जवाब नहीं आया। तो जाहिर है यार शोक है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से अरसे के बाद फिर मैं भी कांटेक्ट करूंगा अपनी प्यारी सी चाची से। जरी नूर आ गई है, कह रही है सलाम, कैसे हैं वाले साहब को, चाची को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आसिफ अली कह रहे हैं सर वही रिकॉर्डिंग वाला रेहान, हाँ रेहान को भी डेडिकेट करेंगे यार तुम्हारी तरफ से, पक्का पक्का पक्का, जरी नूर को भी और इसको भी करेंगे। कामरान अयूब साहब आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब, कैसे हैं आप। अच्छा भाई, एक तो हमारे अयूब अफरीदी आते थे, अयूब जरदारी आते थे, अब ये पहले कामरान और फिर अयूब, वाह वाह वाह वाह क्या बात है। और जनाब आज गया था अपनी उनसे मिलने, मैंगो लेकर, आम लेकर, देखो तुम भी जा रहे हो, अयूब भाई भी आम और गुलाब जामुन भेज रहे हैं, एवं सिर्फ नाम के भेज रहे हैं, मीठा सलाम भेज रहे हैं। और आप तो लेकर चले गए भाई, और कह रहे हैं कि मैंगो पसंद है, फिर वापस आते हुए फ्रूट चाट लेते हुए गया घर वालों के लिए, वाह वाह ये बड़ी अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, बेगम के साथ घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, ये उनकी मगफरत के लिए दुआ कर रहे हैं समी भी चाचा के लिए, और उनको पिक्चर में भी देखा था यार, चाचा बड़े, बस मेरा मूड नहीं खराब हो रहा यार, मैं बहुत ज्यादा टची किस्म का इंसान हूं यार, समझा करो। अच्छा भाई, एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी सी बहनें आती हैं, यंगस्टर्स जितनी भी हैं, जिसमें फरीन भी है, इकरा भी है, माहम भी है, माहीन भी है, और जो जो नाम याद आ रहे हैं फौरन लेते जाओ, माहा भी है, और हमारी एमजे भी है, और महानूर भी है, उन सबको डेडिकेट करेंगे ये वाला ट्रैक। इस ट्रैक को डेडिकेट इसलिए कर रहा हूं, यंगस्टर्स में बड़ा पॉपुलर है, अब तो ये भी थोड़ा पुराना हो गया, बट ब्यूटीफुल ट्रैक है।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको। मैसेजेस आ रहे हैं आपके 3636 पर और चंद मैसेज पढ़ते हैं जनाब। अयूब अफरीदी भाई कह रहे हैं कि आम और गुलाब जामुन गुलबानो बहुत पसंद करती हैं। जिगर गुलबानो की आवाज अच्छी थी। खान ला पता है शो की रौनक थी। बेशक उनका अंदाजे गुफ्तगू बहुत जबरदस्त था और माशाल्लाह से आवाज भी बहुत अच्छी थी। शायरी से भी बहुत लगाव था उनको। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सलाम सर, नदीम सजाद अली का सॉन्ग मुझे सुना दें। अफशां कह रही हैं। अफशां का शायद फर्स्ट टाइम मैसेज आया। अफशां आपकी फरमाइश सर, गोबर जरूर चलेगी। हैं जी ते हैं जी। अच्छा भाई, फरमाइशें भी आना शुरू हो गई हैं कि गुलबान को कह दें कि आए कोई मैसेज करें। और जीबीएन को इन्होंने कहा कि पश्तो का सॉन्ग और माहीन को निगत के नाम कर दो और महानूर को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम खताब गुल्ला लखा गायब हैं आप। आज आप फुल टाइम एक्टिव हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जरीन कह रही हैं संजू कहाँ है, कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा, वो नाराज है। ये किससे नाराज है, आपसे या मुझसे? वैसे तो वो आ नहीं रही, ये मुझे पक्का पता है कि हमारे शो में नहीं आ रही, लेकिन इस तरह तो होता। अरे संजू को भी बोलते संजू आ जाओ। हैं जी हैं जी। लेकिन अभी एक दो दिन पहले उनके मैसेजेस आए थे। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट भी की है किसने, समी ने। हाय समी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, कोशिश करेंगे। अच्छा कह रहे हैं आज मैं आपसे ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, आपसे एक अपनाइयत का रिश्ता है, बड़े भाई जैसा, इसीलिए आपसे अपनी बात शेयर करना अच्छा लगता है। हाय सो स्वीट यार, जीते रहो मुस्कुराते रहो। अच्छा मुझे भी अपनाइयत है आपसे, हैं शहजादे, गो के सभी से है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी सुनने वाले हैं उन सबसे बड़ी मोहब्बत अपनाइयत है, आप हो। वो एक चली गई शादी होकर, गायब हो गई कायनात थी। खिताब लाला थे, जीबीएन गुलबानो थी, जीबीएन नहीं गुलबानो, और डॉक्टर्स थे, डॉक्टर आयशा भी थी। तमाम जितने भी लिसनर हैं सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हाँ क्या दिन थे वो ओल्ड डे। हाय गुजरे हुए दिन के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहा। आप जब किसी को याद करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, याद करना चाहिए। जो जिसने भी आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा हो उसको याद जरूर करो और जिक्र भी करो, और हम करते हैं, अक्सर करते हैं, कभी ना कभी जिक्र हो जाता है, किसी ना किसी का जिक्र हो जाता है। हाय सो स्वीट यार, थैंक यू, आई लव यू। समी कह रहे हैं नदी भाई यू आर अ स्पेशल पर्सन फॉर मी। जीते रहो मुस्कुराते रहो, ढेरों दुआएं तुम्हारे लिए। याद है क्या, समझ रहे ना, आज मैं जनाब एक ट्रैक जो है वो डेडिकेट करता हूं। पहले मैं मैसेज आपके सारे पढ़ लूं। नौमान भाई कह रहे हैं हाँ ये बात भी सही है। चाची कह रहे हैं इद्दत में, इस वजह से जवाब नहीं दिया यार, बिल्कुल। और चाची इन चीजों का बहुत ख्याल रखती है, एब्सोल्युटली राइट नौमान, थैंक यू वेरी मच यार। खैर जी भाई, मैं कामरान की बहन हूं, भाई के मोबाइल में आज पहली बार आपका मैसेज, आपको मैसेज किया है। भाई के मोबाइल से सुनती हूँ आपको और आज पहली मरतबा मैसेज कर रही हूँ। जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन। आप कामरान की बहन नहीं हो, आप बाबा जी भी बहन हो, किसी बात ही कही हो, अपना नाम तो बताओ, ये नाम बताओ नाम।
ये बात हुई ना, अयूब लाला ने बता दिया भाई हमें कि जिगर संजू के घर में मेहमान आए हुए हैं और वो मसरूफ है, फुल टाइम खाने शाने बना रही होगी संजू।

वेलकम बैक आएंगे सुनो मेरा दिल पीतल सा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। और भाई हमारी प्यारी सी बहन जो कि कामरान अयूब की सिस्टर है, उनका नाम है अनीसा। बहुत प्यारा नाम है, जीती रहो मुस्कुराती रहो, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो अनीसा कुछ कहना चाहोगी शो की हवाले से, कुछ सुनना चाहोगी तो वो भी बता दो भाई। समी कह रहे हैं शुक्रिया नदीम भाई, ये सॉन्ग मुझे किसी ने, मुझसे किसी ने मांगा भी था। क्या बात है, किसने मांग लिया भाई जरा बताओ। हैं जी ते हैं जी। और हज के कुल 3 अरकान है, एक एहराम, 2 वकूफ, तीसरा अरफात, तवाफ ज़ियारत। 4 तो आपने बता दिए हैं फरहीन, सोचो सोचो। और जिगर 100 का फन कब तक होगा, 100 का फन कब तक होगा? अच्छा, कब तक ठीक होगा फोन? जब तारे जुड़ जाएंगी, कोशिश कर रहे हैं फुल टाइम तारे जोड़ने की।

0: का हमेशा की तरह यानी बिल्कुल सही कहा, कपड़े और मिठाई चीजें और बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। हाँ ये तो है भाई। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं जरा बताइएगा तो सही। यार बताए ना सही, हरा कुछ तो बताए भाई। और समी के मैसेज और आ रहे हैं भाई। पाकिस्तान का वो कौन सा भाई शहर है जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? ये सवाल है, ये मुझे समी ने कहा है कि पूछिए। और कह रहे हैं अगर बूझने में मास्टर हैं आप तो बताएं। वैसे मैं तो फौरन बता सकता हूं आपको समी इसके बारे में, लेकिन क्योंकि आपने सवाल कर दिया है इस वजह से मैंने वो फ्लोट कर दिया है। मैसेज में बता देते हैं अभी आपको। आप समझते मुझे नहीं पता, आपके इस सवाल में ही उसका आधा जवाब है। अब आप मुझे बताएं मैंने सही पहचाना है। आपने जो सवाल किया ना कि पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद शहर है जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते आते हैं, इसमें एक उसका एक हिस्सा है इस सवाल में भी।
1: बताएं मैंने सही बताया या गलत बताया ये जरा बताओ।
0: तो कोई तो है जो मुझसे भी सवाल पूछ रहा है यार। कह रहा सही बताया
1: ये देखा।
0: अच्छा भाई हम लोग बात कर रहे थे, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से लिसनर जो नहीं आ रहे, तो मुझे अभी याद आया मैं गाने ढूंढ रहा था तो हमारी प्यारी सी बहना गुलबानो जो है उनको एक गाना बड़ा पसंद था, तो उनको हम गाना डेडिकेट करता है जनाब पूरे FM 100 की जानिब से। एलो पढ़ो। और उनके साथ साथ तमाम डॉक्टर्स को भी पसंद था।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अच्छा भाई आसिफ कह रहे हैं क्लिफ्टन से सर सिटी। अच्छा अरे भाई नाम तो बता दिया उन्होंने, आसिफ ने बिल्कुल सही नाम बताया भाई है समी, आसिफ ने बिल्कुल सही नाम बता दिया तुमने जो पूछा था। और जनाब इंतजार साहब के बाद आसिफ, आसिफ के बाद कोई हंस रहा है बहुत भाई, अब क्यों हंस रहा है ये मुझे नहीं पता। वाजिद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई क्या हाल है, मैं भी आपका आपको रेगुलर सुनता हूँ और आपका मैसेज भी अक्सर करता हूँ। वाजिद भाई मैसेज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बस कभी कभी किए होंगे आप, अगर हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट प्ले कर दें साहिर अली बग्गा का न्यू सॉन्ग जो भी हो। अरे वाह भाई वाह वाजिद भाई, चला देंगे भाई, डोंट वरी। अच्छा भाई अयूब भाई ने एक बहुत जबरदस्त सी बात लिखी है, शायद मेरे ऊपर फिट होती है। अच्छा जी एमजे कह रही हैं मैं आपका कोई शो मिस नहीं करती हूँ, कल भी मैंने पूरा शो सुना था आपका लेकिन पैकेज खत्म हो गया था। ए, मेरा प्यारा सा शहजादी, मेरी प्यारी सी शहजादी मेरी बहना, बहुत शुक्रिया, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। और इसलिए लाइव मैसेज नहीं किया, आपका शो का इंतजार करती रहती हूँ, जीती रहो मुस्कुराती रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। जरीन कह रही हैं आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा प्लीज, आइंदा तंग नहीं करूंगी। अरे जरीन कैसी बातें कर रही मेरी बहन, तुमने मुझे कब तंग किया। अच्छा वो आपसे नाराज है, अरे ना ना ना भाई भाई संजू ऐसी हरकतें मत किया करो भाई, इतनी प्यारी सी हमारी बहन है जरीन नूर, तो जो भी नाराजगी हो ना जरीन, वो नाराजगी अगर आप समझती हैं कि दुरुस्त है तो आप जो है सॉरी कर लें, यानी कि समझ रही है ना आप। जमा सरदार उसको बोले तो जमा सरदार दमी नहीं यार, संजू को बोल दो। तो हम संजू को आपके लिए गाना जरूर डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी। अच्छा भाई अनीसा क्या कह रही है, भाई आप और समी भाई जब पहली बार जब मैंने सुना था आपको मुस्कुरा रहे था, बात नहीं पता क्या थी, मैं उस दिन उदास थी, जैसे ही एफएम चलाया आप दोनों को हंसते हुए सुनकर मैं भी हंसने लगी, आई सो स्वीट, फिर मैं आपको शो रोज सुनने लगी हूँ। अरे ये हुई ना बात, सुना को जो बहुत सुना को जो, जब भी उदास हुआ करो शो सुन दिया करो, यानी कि समझ आएंगे ना, गुदगुदी होती है तुम्हें, पहले ये बताओ अनीसा बताओ। जमा सरदार, अरे हमारी प्यारी सी बहना नौरीन भी आ गई है, नौरीन तो ऐसी फैसलाबाद, तो कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं, और नाम इन्होंने भी बिल्कुल ठीक बता दिया भाई, दो नाम सही आ गए हैं ये तो मुझे इन्होंने बताया। हज की बुनियादी अरकान चार हैं और तरतीब वार उनके नाम ये हैं, एहराम मानना, वकूफ अरफात, तवाफ ज़ियारत, सही सफा और मरवा के दरमियान, ये अरकान अदा किए बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। अच्छा एक शख्स मतलब एक इस दुनिया में ऐसा भी है, मतलब एक क्या कहेंगे अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको जाके पत्थर मारो यार, कूटो इसको जितना कूटना है, ता कयामत तक उसको पत्थर पड़ते रहेंगे, तो वो अरकान भी नहीं आता क्या नौरीन, ये बताइएगा मुझे बताइएगा। भाई लोग उसको उसकी बातें इतनी मान रहे हैं, उसका नाम ही नहीं लिया किसी ने, कौन है वो बताइए जरा। अच्छा भाई मैसेज शामिल करने का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने। अच्छा जी मानूर भी सो रही है, वो सो रही है, हाँ हो सकता सो रही हो, उसका भी पैकेज ना खत्म हो गया हो अयूब भाई। Ah और पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, बस मेरे ख्याल है बस लिखा हुआ, बस जालिम लोगों को करार नहीं मिलता। मुझे करार से वो गाना याद आ गया, करार दिल का करार तुम ही हो तो तुमसे ये कहना था, अली हैदर का गाना। चलिए इसी बात पर हम गाने भी आ गए तो आपको कुछ सुरीला गाना भी सुना देते हैं। कहाँ गया भाई ये रिया? हाँ जी भाई, अभी हम जो ट्रैक चला रहे हैं ये ट्रैक हम बहुत सारे लोगों की फरमाइश है वो पूरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, उन्होंने बोला सज्जाद अली का गाना चला दीजिएगा भाई, और उसके साथ साथ हमारे इरफान मेमन और मेरी प्यारी प्यारी सी मेमन फैमिली में जो बहने हैं, दुआ मेमन है, मानूर मेमन है, अरूसा मेमन है, एक और मेरी बहन है सायरा मेमन, तुम कैसी हो? देखो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, भूलता नहीं हूँ। और हमारे सलीम मेमन साहब और भी जितने भी मेमन मेरे सुनने वाले हैं उन सबको सज्जाद अली बहुत पसंद है भाई, तो सज्जाद अली का गाना सुना रहा हूँ, ये लो पकड़ो।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किड़ा गण कैन किड़ा गण कि ग्रहा किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किड़ा गण।

वेलकम बैक कड़ा। इसका मतलब क्या है बताइए। अच्छा भाई वड़ी ईद ते पाकिस्तान में शादी की अकसाम। वड़ी ईद में शादी की अकसाम भाई, पसंद की शादी, घर वालों की पसंद की शादी, जैसे आपको ठीक लगे वाली शादी, तेरी उम्र निकल जा रही है वाली शादी, घर की इज्जत का सवाल है वाली शादी, बस मैं अपने पोते का मुंह देख लूं वाली शादी। सही जा रहे हो भाई। नदीम भाई आपकी कौन सी वाली शादी है? घर वालों की पसंद की से शादी, ये वाली है। मेरी शादी तो मेरी उम्र निकल जा रही है वाली शादी हो गई। वैसे आपकी कौन सी वाली शादी हुई है भाई? ये ऑप्शन भी रख देते हैं साथ में, क्योंकि इन्होंने जो सवाल पूछा था वो तो बहुत ही आसान सा था और वो 15 नुक्तों वाला। तो पाकिस्तान में अकसाम जो है शादी की, वो पसंद की शादी है, घर वालों की पसंद की शादी है, जैसे आपको ठीक लगे बस वैसी शादी है, और तुम्हारी उम्र निकली जा रही है वाली शादी है, घर की इज्जत का सवाल है वाली शादी है, अब पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ वाली शादी है। तो आपकी वैसे कौन सी? मेरे से सवाल कर दिया, मैंने तो बता दिया भाई। नदीम भाई हम दोनों हिस्सा मिल के एक चिकन कुर्बान कर रहे हैं। अभी तुम दोनों एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो फिलहाल, तो ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है भैया। मेरी प्यारी सी बहना संजीदा को हमेशा की तरह बहुत अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा भाई। सही फरमाइशें आ रही है संजू तुम्हारे लिए, जरीन नूर की जानिब से भी और इनकी जानिब से भी। जी शैतान को कंकरी हमारा रमी जमारात कहलाता है, ये हज के अरकान में शामिल नहीं है बल्कि हज के वाजिबात में शामिल है। मुख्तसर तौर पर हज के चार अरकान है, ये तो मुख्तसर तौर पर नहीं हकीकी तौर पर है। तो शैतान को क्यों भूल रहे भाई, मारना है भाई कुछ भी हो जाए। अच्छा जी वाजिबात में इसके अब खैर जब इंशाल्लाह ताला ईद ईद कुर्बान करीब होगी तो मैं आपको इसको बड़ी तफसील से इसके हवाले से बताऊंगा, हज के अरकान के हवाले से। और जो लोग हज करने जाते हैं, अब हज जो है वो तीन तरह के भी हैं, आपको पता है तरीक़ेकार तीन तरह के। खैर मैं आपको बाद में मानूर आ गई करे बाबू, आपको और अयूब आफरीदी भाई को सलाम। जमा सरदार दामिनी यार नाइस सॉन्ग था, इसका मतलब है तुम सुन रही हो। हसन नियाजी साहब कह रहे हैं और अरीब नियाजी साहब और जारा नियाजी इत्तेहाद टाउन से। नदीम भाई सॉन्ग सुना दो सिरा की सॉन्ग, सही जरूर सुनाएंगे सही, नियाजी सारे इकट्ठे हो गए हैं तो इनको सही हम सुनाएंगे सही, गाना डसाओ सही केड़ा गाना सुन सो। और स्क्रॉल करना पड़ेगा जी। अफजल खान कुछ कह रहे हैं भाई, अच्छा भाई ये अपने ख्यालात का इजहार इन्होंने किया है। और अफजल भाई बिल्कुल सही बात है आपका मैसेज, ये मेरे लिए था मैंने पढ़ लिया। और मिर्जा साहब की कह रहे ने द ग्रेट सजाद अली जी मजा आ गया, एक और गाना चलेगा जनाब मिर्जा साहब तुहाडे वास्ते भी। मेरी शादी का कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो घर वाले कह रहे होंगे ना, उम्र जा रही है भाई अब कर ले, दोस्त भी कह रहे होंगे भाई बहुत हो गया ये अभी तक। फिर एक वक्त ऐसा आएगा इस उम्र में फ्री होता है जो आपको पसंद आए कर ले बस उसी से कर ले। तो मिर्जा साहब जरा दस होते सही कि किस पोजीशन पर हैं आप। अनीसा कह रही है भाई आपसे एक बात पूछनी है, पूछो बच्चा अनिशा पूछ लो, क्या बात पूछनी जल्दी से पूछ लो। और हमारी तो बस यही कोशिश रही है नदीम भाई कि शो की वजह से पब्लिक खुश हो जाए थोड़ा हम भी, यानी कि समझ रहे ना। ये क्या लिखा हुआ है, तामुन कर देते हैं थोड़ा हम भी तामुन कर देते हैं, तुम सही जा रहे हो भाई।
आगे गुफरान भाई भी कुछ खा पी कर आ रहा है, मुझे फुल टाइम लग रहा है अकेले अकेले। अभी मेरी तरफ देख नहीं रहा समी, ये देखेगा तो फिर हमारी आवाज सुनेगा, फिर हमें पता चलेगा। अच्छा भाई, अब आप लोगों को ना एक बहुत जबरदस्त ट्रैक की जानिब लेके जा रहा हूँ। ये बड़ा ट्रेंड में ट्रैक काफी अरसे से चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियंस भी बड़ा सुन रहे हैं और इस पर बड़ी रील्स वगैरह भी बन रही है। अच्छा गाना है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। ये भी हम डेडिकेट करते हैं तमाम यंगस्टर को। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे भाई। भाई गाना कैसा लगा आपको ये बताइएगा। और हुफरान भाई भी आ गए हैं।
1: वैसी वाले नहीं हाँ, लेकिन पसंद
0: इससे पहले कि मैं कुछ कहता हुफरान भाई ने एक्सप्लेन कर दिया। भाई वो शादी वाली जो मैंने कहानी पूछी थी ना कि आपकी कौन सी वाली अकसाम कौन सी है आपकी शादी की, तो इनकी पसंद वाली शादी है। समी भी पूछ रहा था ना पसंद वाली शादी है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह की पसंद वाली शादी है।
1: ये भी जो है ना टॉपिक रख सकते हैं।
0: जी जी जी जी जी जी
1: शादीशुदा जितने भी हैं उनके ससुराल कितने दूर हैं?
0: कितनी दूर है? इससे क्या फायदा है? फायदा और नुकसान बहुत है।
1: बाकी फायदा भी है इसमें नुकसान भी ये भी आप रख सकते हैं। अभी तो कहते हैं
0: अभी नहीं, ये तो एक चर्चा है गफरान भाई। ससुराल वाली जो बात है ना ये अभी हम ईद से पहले कोई प्रोग्राम में मैं इसके हवाले से बात करूंगा, क्योंकि ईद का एक दिन ससुराल डे भी होता है कि ससुराल जाना बड़ा जरूरी है ना, वो तो जरूरी है।
1: सेकंड
0: डे होता है
1: अक्सर होता है,
0: ज्यादातर यही होता है ससुराल डे। वैसे सेकंड डे ही कहलाता है, आपका फर्स्ट डे होता है। चले जी, आप लोग अगर बताना चाहे इस बैच में शामिल होना चाहे तो बिल्कुल हो सकते हैं। और एक वो भी आ गए हैं हमारे उमर रुबाब भी आ गए हैं चितोरा से। उमर रुबाब कह रही है सलाम। उमर रुबाब सलाम, हाल खूब औसिम खाना कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, मेरी फारसी सुन रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेज की जॉन है। सुजा साहब क्या कह रहे हैं? नदीम भाई तुसी भी बड़े शरारती।

0: सराय की गाना सही न्याजी फैमिली के लिए एलो फड़ो।
1: अरे
0: सराय की गाना चलाना और चल कौन सा गया देखो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो मिंडा रांझणा मिंडा रांझणा मिंडा रांझणा। जरीन नूर ने थैंक्स कहा भाई गाने के लिए बहुत बहुत, जो कि हमने संजू को डेडिकेट किया था। अभी हम एक और गाना डेडिकेट करेंगे, बहुत अच्छा भाई। हमारी प्यारी सी बहना नौरीन कहाँ गायब है आप? मैसेज वेसेज नहीं आ रहा है। ये आया ना गफरान भाई, आया गफरान भाई, जबरदस्त यार। और फरीन शहजादी हमारी क्या कह रही है? नदी भाई मेरा आंसर सही दिया है या नहीं? हाँ हाँ बच्चा, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चार अरकान आपने बताए, बिल्कुल सही बताए। और महानूर गरीब बाबू यह संग प्ले कर दो, ये सॉन्ग प्ले कर दो, दोस्त बन के रहते हैं ना, बस ये क्या करें। अब फरमाइश जो स्पेसिफिक आती है ना, वो बड़ा मुश्किल होती है उसको प्ले करना आजकल। जब आपकी गली मोहल्लों में रोडे खुदी हुई हो, गड़े हो, चलना मुश्किल हो, फरमाइशें कहाँ पूरी हो सकती हैं। अच्छा जी सलाम सुने हो, आजकल आप SMS पूरे नहीं पढ़ते हैं। कल भी मैंने 7 से 8 SMS किए थे। सलीम मेमन कह रहे हैं, सलीम मेमन कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं जो कि पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। यानी कि समझ रहे हैं ना आप तो हैं मासूम से। आज हमने आपको गाना भी डेडिकेट किया आपकी मैसेज के आने से पहले, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी गलत फहमी क्यों हो जाती है और कैसे दूर होती है आप बताइए जरीन नूर, अभी हम आपको बताते हैं। गलत फहमी का जब नाम आ जाता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आपसे कोई ना कोई ऐसा काम सरजर्द हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, या आपको बाद में एहसास हुआ हो कि यार ये तो गलत हो गया। वेरी बैड यार, वेरी बैड। तो गलत फहमी स्पेशली देखिए मैं आपको बताऊं कि हो जाती है यार, अपनों में हो जाती है, बहुत प्यारों में हो जाती है, सदियों से सैकड़ों सालों से ये सिलसिलेकार इसी तरह चलते हुए आ रहे हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ हल ये होता है कि गलत फहमी को दूर किया जाए, अपना मौकिफ बताया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं दूसरा भी वैसा ही सोचता हो। ठीक है, दूसरा किस पैरा में सोचता है ये आपको नहीं पता, तो आप अपने तौर पर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, सही चल रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले की नजर में वो काम ऐसे हो सकते हैं, वो अमल ऐसे हो सकते हैं जो कि उनकी दिल आजारी कर रहे हो, जो वो समझते हो कि उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह होती हो। तो आप उस गलत फहमी को दूर करने के लिए अपना मौकफ सामने वाले के उसके सामने रखें, बताएं कि ये अमल मैंने इस तरह किया, और अगर वो समझदार है, अच्छा इंसान है, तो आपकी गलती को और गलत फहमी को आपकी गलती को और अपनी गलत फहमी को दूर कर लेगा और माफ कर देगा दिल से। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में हमारा। और क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं और भाई। और थैंक्स का मैसेज था। अच्छा जी मेरे प्यारे दोस्त हातिम गोपांग को आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आए हाय इस वक्त वो सुन रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, कहता है कि मुमताज लाशारी सुनाओ सही। अच्छा भाई हातिम भाई, हातिम गोपांग भाई, मैं बहुत माजरत चाहूंगा आपसे। अभी कुछ सिलसिलेकार ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे आपके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर हैं जो कि स्पेसिफिक किसी सिंगर की या कोई फरमाइश करते हैं, तो वो मैं पूरी नहीं कर पाता। उसकी कुछ हमारी अपनी टेक्निकल मजबूरियां भी होती हैं, हमारी हमें इजाजत लेनी पड़ती है बहुत सारी चीजों के लिए, और कुछ और भी मामलात होते हैं जो कि मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता। तो लिहाजा आपकी फरमाइश जो है स्पेशली ये मुमताज लाशारी साहब, ये तो अभी नहीं पूरी करूंगा, लेकिन कभी ना कभी जरूर पूरी करूंगा। अभी हम आपको सही एक सिंधी गाना, ट्रेडिशनल गाना जो है ना, वो आपको डेडिकेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सही कहाँ है गाना?
सही किधर गया, सही ये रहा गाना, सही वो ये लो पकड़ो सही।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और सही आपको गाना पसंद आया होगा। अच्छा भाई, फरमाइशें इतनी सारी जमा है, मैंने अभी टाइम देखा, मैं पूरी कर भी सकूंगा या नहीं। लाला आप कहाँ गायब हो गए हैं, ऐसे गायब हुए हैं कि क्या बात है। खैर जी, फरमाइशें क्योंकि आपकी सारी पूरी करनी है, हमारे जानू भाई बर्गर वाले जो है ना, वो भी इस वक्त सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर साहब का अगर कोई गाना चला दें तो। जानू बर्गर वाले, हमारा तुम्हारे लिए गाना है, हल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सुनियो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, क्यू चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यार सा नाम प्यार सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अभी आपने एक मेडली सुना जावेद अख्तर साहब का जो कि मेरे वालिद मोहतरम है, फरमाइशें उनकी बहुत आ रही हैं और मुश्किल लैला का मैसेज भी आया इस हवाले से कि जावेद अख्तर साहब का हर सॉन्ग पाकिस्तान की पहचान है। शुक्रिया बहुत बहुत। और उन्हीं का एक गाना यार मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा सुनाऊं आपको। ऐसे ही बस दो चार बोल सुनाएंगे आपको और ये ट्रैक जो है वो अली जफर साहब ने भी गाया था अभी हाल ही में, तो जरा सुनिएगा थोड़ा सा।

आंखों में बसने वाले मेरे चमन की माँ हुई ब्यूटीफुल ड्रैगन है, होगी आपको पसंद आया होगा थोड़ा जिया फरमाइशे, ऐसे आप लोग करते रहते ना मेरी आवाज की भी। अच्छा भाई मुश्की थैंक यू वेरी मच, और मुश्की आपको जावेद अख्तर साहब अगर पसंद है वो तो एक गाना उनका आपको डेडिकेट करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। नाहिद मुगल कह रही है नदीम भाई मोहब्बत खान और अनारदाना का कोई गाना सुना दें। नाहिद आपने बहुत देर में फरमाइश की है, अब तो शो इख्तिताम की तरफ गामजन है, तो आपकी फरमाइश हम नोट कर लेंगे और नेक्स्ट शो में चला देंगे। शादी के बाद शादी एक दो महीने के बाद हर मर्द अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है और उसके बाद फिर सारी जिंदगी सिर्फ पनाह चाहता है, बेहट जाता है उसमें। ये हमारे सलीम मेमन साहब हैं और जनाब जाता हूँ क्या लिखा हुआ है, जाते हैं और जो जाग रहे हैं उनको का आपको एहसास ही नहीं है। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ मेरे शहजादे आप क्या कह रहे हो, शहजादे या शहजादे। अरे अब आया सर, शो खत्म होने वाला है, मेरी डेडिकेशन पूरी नहीं हुई, घर में सोए लोगों को तो फौरन सॉन्ग डेडिकेट हो जाता है, हाय। और जो जाग रहे होते हैं हाय हाय उनका एहसास ही नहीं है। अरे शहजादे अभी तुम्हारा गाना चलाते हैं यार, डोंट वरी, नेक्स्ट गाना जो है वो हम आपकी जानिब से डेडिकेट करेंगे। वैसे आसिफ वाकई में मेरे जहन से निकल गया था, मैंने नोट नहीं किया हुआ था, मैं समझ रहा था कि मैंने नोट किया हुआ है, तो आसिफ आपका गाना जरूर चलेगा। और जलाल चांडियो का सॉन्ग शाफी जान शाहानी साहब सदर कराची से, भाई जलाल चांडियो का गाना अभी नहीं चला सकते, वक्त जो है ना वो बिल्कुल फुर करके उड़ रहा है। सलीम भाई आपके एक दो मैसेज फिर जो है ना आगे पीछे जा रहे हैं। नवीद छोटे भाई नवीद ने आपके लिए सलाम कहा है, सलीम मेमन कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाई। नवीद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से, किथे गायब है, खुद भी मैसेज कर दिया करो शहजादे। और जनाब नौरीन क्या कह रही हैं, नदीम भाई फैज अहमद फैज का इंतजार, हाय हाय हाय जरूर प्ले कीजिएगा मेरी प्यारी सी शहजादी है ना, आज के लिए माजरत। और संजू को सॉन्ग डेडिकेट कर दिया उसके लिए थैंक्स। फरीन कह रही है जबरदस्त सॉन्ग आया, बहुत बहुत शुक्रिया फरीन। अच्छा भाई हमारी प्यारी सी एक और शहजादी यहाँ पर आई हैं बहना अनीसा, उन्होंने कहा भाई मैं इस बात से परेशान हूँ कि जब आपकी हर बात हर काम को गलत समझा जाए फिर आपको क्या करना चाहिए। मेरे वालिद नहीं है, हम पुप्पो के घर में रहते हैं। तो अनीसा इस हवाले से मैं मुख्तसर आपको ये बताऊं कि हमेशा याद रखना कि जब आपकी हर सही काम को भी गलत तसव्वुर किया जाता है, गलत माना जाता है, तो फिर आप परवाह ना करें, आप जो सही काम कर रही हैं उस पर भी डटी रहें, उस पर डटी रहें आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको डांट डपट या आपको सुनने को तो अच्छा काम करेंगी तो भी मिलेगी, बुरा काम करेंगी तो भी मिलेगी, तो लिहाजा अच्छे काम को कभी ना छोड़ें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें और अपने मौकफ पर जिस पर आप सही हैं उस पर कायम रहें। इसी बात पर जनाब हमने फौरन से पेशतर जाना है एक ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक जनाब हम आसिफ अली की जानिब से डेडिकेट करेंगे रेहान साहब को और जरीन नूर को।

आसिफ भाई, उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और हम आपसे माजरत भी चाहेंगे भाई लेट डेडिकेशन का, क्योंकि आसिफ ने बहुत पहले डेडिकेशन के लिए कहा था। और अब जनाब हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे किसको, अफशा ने हमें मैसेज किया था। इन्होंने भी बिल्कुल शुरू में हमें मैसेज किया था और कहा था सज्जाद अली का कोई गाना चला दीजिए, तो सज्जाद अली का एक गाना हेलो फड़ो

कुछ लड़कियां देखे मुझे, छेड़े मुझे, मुझे तंग करें इस प्यार से ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि अफशां को भी पसंद आया होगा और सज्जाद अली के लवर्स को भी पसंद आया होगा। वक्त क्योंकि बहुत तेजी से गुजर रहा है तो लिहाजा संजू को भी एक गाना डेडिकेट करना है और मुश्किल लैला को भी डेडिकेट करना है। तो मुश्किल लैला आपके लिए ये ट्रैक है, मैंने जैसे कि कहा था ना जावेद अख्तर साहब की आपने तारीफ की, तो जावेद अख्तर साहब का ही गाना जो है वो आपको डेडिकेट किया जा रहा है। एलो फड़ो।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकाम, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।